Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 10.

0: बस यही तो कमाल है हिंदी फिल्म म्यूजिक का। कुछ सेकंड पहले तक आरी आरी जैसे गानों के साथ खून तेजी से दौड़ रहा होता है, आपके अंदर इतना एड्रेनलिन भर जाता है कि लगता है कि दुनिया जीत लोगे, एंड अगले ही पल अगला ही गाना उसी दिल को धीरे से पकड़ लेता है, और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले हफ्ते मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आवारापन का वो गाना जिसका इंतजार सिर्फ फिल्म के फैंस नहीं पूरा म्यूजिक सर्किट कर रहा था, इस हफ्ते वो काउंटडाउन पर जरूर डेब्यू करेगा। तो बस प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले आई नीड टू से दिस दैट आई लव अमाल मलिक। He's like my younger brother, और अमाल की कही हुई एक बात मेड मी फील सो सो प्राउड अबाउट हिम।
1: I'm the SRK of music and romance, who I believe another who soul travels just like me is Mithun. I think an art like mere senior hai, but he's the only one I feel. And I'm har jagah sab bolta hu, and egoistically nahi ki I'm the SRK of music and romance. Main hu, so I believe the best. But someone who always hum log mein ek yani competition nahi rahega, but I think someone who touches my soul on that level is him. Wo utni purity se he also works. So we are the only two people who are trying to do in our generation purest work.
0: यार कितनी खूबसूरत बात है। हर कंपोजर का अपना एक सिग्नेचर होता है, अपनी एक मेलोडी होती है, अपना एक इमोशन होता है, और जब एक कंपोजर दूसरे कंपोजर की सोच को इतनी इज्जत दे तो समझ लीजिए म्यूजिक सिर्फ कंपटीशन नहीं कॉन्वर्सेशन बन गया है, और इस कॉन्वर्सेशन का नया चैप्टर आज ऑफिशियली शुरू होता है ऑन द चार्ट्स, डेब्यूइंग स्ट्रेट ऑन नंबर 9। रश्मि विराग के लव्स, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन और अरिजीत सिंह की आवाज, ये आरापन।

0: टॉक्सिक का बज देख के एक बात तो तय है, अगस्त बॉलीवुड के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल महीना नहीं होने वाला है। एक तरफ यश 4 साल बाद KGF के बाद स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं, दूसरी तरफ 19 साल बाद आवारापन अपनी कहानी आगे बढ़ा रही है। और फिर एक ऐसी फिल्म है जिसका ट्रेलर देखते ही मुझे एक बात रियलाइज हुई, बंटवारा 1947 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी स्टोरी या उसका स्केल नहीं है, उसकी पार्टनरशिप है। आमिर खान एज अ प्रोड्यूसर, ए आर रहमान और जावेद साहब, द लगान, द जोधा अकबर डुओ, उनका कॉम्बिनेशन फिर एक साथ। लेकिन जिस रियूनियन ने मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट किया है वो है राजकुमार संतोषी और सनी देओल का रियूनियन। सनी देओल की सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस याद कीजिए, घायल, दामिनी, खातक, तीनों के पीछे एक ही डायरेक्टर थे, राजकुमार संतोषी। और ये तीनों फिल्में सिर्फ हिट्स नहीं थी, ये वो फिल्में थी जिन्होंने सनी देओल को सनी देओल बनाया। अरे यार, बॉर्डर और गदर तो काफी बाद में आए थे, और जब भी ये दोनों साथ आते हैं फिल्म तो हमेशा हिट ही मिलती है, लेकिन सनी देओल का एक नया वर्जन भी मिलता है।
1: आप लोगों ने आई एम श्योर घायल देखी है, दामनी देखी है, घातक देखी है, और अब बंटवारा आ रही है। राज और मेरी कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसी रही है जहाँ पर पता नहीं कैसे हम कुछ भी, राज मुझे कोई बात करेगा और मैं, बात सही होती है, कहानी अच्छी होती है, तो तुरंत हम लोगों की वेवलेंथ सेम है, वी गेट एक्साइटेड और फिर हम पूरी कोशिश करते हैं एक दूसरे को चैलेंज करने की व्हाइल वी आर वर्किंग। और सब फिल्में हमेशा एक समाज के साथ जुड़ी होती हैं, इसलिए हमारी कहानियाँ हमेशा शुद्ध होती हैं मेरे हिसाब से, और वो हर इंसान जो देखता है उसके अंदर उसको कुछ इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसे अपनापन दिखता है। That's a kind of cinema I love to do and I've been doing.
0: बस इसलिए बंटवारा 1947 का इंतजार सिर्फ एक और फिल्म का इंतजार नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हिंदी सिनेमा की एक लेजेंडरी जोड़ी फिर से अपना जादू दिखाने आ रही है। But right now, जादू है गुरु रंधावा का, जिनका गाना चार्ट्स पर नंबर 7 पर है इस हफ्ते। कहर फ्रॉम धमाल 4 इज हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20।
2: नंबर 7।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 6.

शरारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या है? मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज नहीं, उसका मुखड़ा भी नहीं। इस गाने की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेंथ है, उसके वो पहले कुछ सेकंड्स। जब गाना बस शुरू होता है और आपका दिमाग तुरंत बोलता है, ओह यस, दिस इज शरारत।

Am I right or am I right? यार मुझे लगता है कि म्यूजिक की दुनिया चुपचाप बदल रही है। आज गाने का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका हुक बन गया है, क्योंकि वही रील्स पर और शॉर्ट्स पर ट्रेंड करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, द कंपोजर्स गाने में सबसे ज्यादा प्यार उसकी शुरुआत पर खर्च करते थे। एक इंट्रो जो बिना एक भी लफ्ज बोले अपनी पहचान बना लेता था।

धातु है। शायद इसलिए कुछ इंट्रोस सिर्फ म्यूजिक नहीं होते, वो मेमोरी के फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। एक बार सुन लो और सालों बाद भी इसे पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। वैसे ही इस हफ्ते नंबर 4 पर जो गाना है उसकी पहचान भी उसका इंट्रो ही था, चुनरी चुनरी। लेकिन जिस गाने की हम इतनी बात कर चुके हैं, जिस गाने का मैं इतना जिक्र कर चुका हूं, दैट इज गोइंग टू बी माई पिक ऑफ द वीक। जन्नत की पूरी एल्बम में शायद सबसे अंडररेटेड ट्रैक, लेकिन मेरे लिए सबसे प्यारा, वही इंट्रो जो दिल पर अब भी दस्तक दे रहा है, सॉन्ग बाय माय ऑल टाइम फेवरेट सिंगर के प्रीतम दा की धुन। हाँ तू है।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3

और दूसरी हिट फिल्म का सीक्वल आ चुका है वेलकम धमाल दे दे प्यार दे। देन यू आल्सो गॉट सम कल्ट क्लासिक्स लाइक बॉर्डर एंड गदर। एंड लगता है कि बॉलीवुड को एक ही चीज का नशा है एंड दैट इज फ्रेंचाइजेस। लेकिन इतने सारे सीक्वल्स के बीच एक नाम है जिसकी कमी हर साल और ज्यादा महसूस होती है और छुपती है। धूम जैसे फिल्म कहा थी, ये स्टाइल था, एटीट्यूड था। पहली धूम में जॉन अब्राहम ने बाइक्स को कूल नहीं बनाया, उन्हें एस्पिरेशनल बना दिया। सबको एक सुपर बाइक चाहिए थी। फिर आए ऋतिक रोशन और धूम 2 ने फ्रेंचाइज को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। डूड ऋतिक नेवर लुक्ड एज सेक्सी एज ही डिड इन धूम 2। एंड उसके बाद 7 साल बाद सिर्फ खामोशी। यस, आमिर खान की धूम 3 आई जरूर, लेकिन वो दीवानगी वापस नहीं आई। और हाल फिलहाल आप सुन रहे होंगे कि इस सीरीज को रीबूट करने की प्लानिंग चल रही है। रणबीर कपूर का नाम डिस्कस हो रहा है, फिर ये पता लगता है दैट स्क्रिप्ट की वजह से रणबीर भी एग्जिट कर गए। सच कहूं, मुझे नए विलन की बिल्कुल फिक्र नहीं है। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जिस फ्रेंचाइज ने हिंदी सिनेमा को इतना स्वैग और इतना कूल दिया, उसे सिर्फ कमबैक नहीं, ब्लॉकबस्टर कमबैक मिलना चाहिए। सो YRF, टेक योर टाइम, जितना वक्त लेना है आप ले लो, बस धूम को स्पाई यूनिवर्स वाले रास्ते ना ले जाना। तब तक YRF का दिया एक और सुपरस्टार जिसने शुरुआत की थी विद बैंड बाजा बारात, आज बॉक्स ऑफिस पर सबकी बैंड बजा रहा है। एक बार फिर माय मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ लास्ट ईयर इट्स स्टिल नंबर 1। दिस इज गहरा हुआ स्टारिंग रणवीर धुरंधर सिंह। नंबर 1।

0: एक और हफ्ता और गहरा हुआ फिर से नंबर वन। सच कहूं लगता ही नहीं कि धुरंधर का मैजिक बिल्कुल फेड हुआ है। इस एपिसोड में वैसे मुझे बहुत मजा आया, मेमोरीज की बात की, नई ट्यून्स की बात की और उन कहानियों की भी जो सिर्फ फिल्मों में नहीं हम सबके अंदर रहती हैं। आई होप यू लाइक द एपिसोड एज वेल। अगली बार फिर मिलेंगे हियर ऑन द मिर्ची टॉक 20। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ only on Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi. Mirchi.

Michi. It's hot.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। कई बार तो मोहब्बत के उस मुकाम तक पहुंचे हम अपनी जिंदगी में, वेर वी आर लाइक कि यार इससे अच्छा तो मर जाना था, बट हमारा मतलब इतना बुरा हाल किया है एक इंसान ने हमारी जिंदगी में, एकदम जोकर बना के छोड़ दिया। और अगर आपके साथ जिंदगी में ऐसा हुआ है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू आर नॉट दी ओनली वन। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है कितने सारे रिलेशनशिप्स में, लेकिन अगर आप भी कभी मुर्गे बने हो, देन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, एंड लेट्स टॉक अबाउट वो रिलेशनशिप जिसने आपको निहायत ही स्टूपिड फील कराकर छोड़ा। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर अभी अंकित है। हाय अंकित।
2: हाय रोशी, हाउ आर यू?
1: मैं तो ठीक हूँ यार, मतलब प्यार, एक्चुअली वी हैव वन थिंग इन कॉमन।
2: And what is it?
1: और वो ये है कि प्यार में मैं बड़ी गधी थी और प्यार में तू बड़ा गधा था। तूने मेरे को स्टोरी तो बताई नहीं थी इंस्टाग्राम पे।
2: हाँ, कटा तो था लेकिन उससे सीखने को भी काफी मिला।
1: अच्छा, तो जरा बताना कि आपका ये जो टॉर्चर का पीरियड था कितना लंबा था और एग्जैक्टली स्टोरी क्या है।
2: तो इट वॉज फॉर अराउंड 6-6.5 ईयर्स, काफी लंबा टाइम था, इसलिए धीरे धीरे कटा, हलाल हुआ आराम आराम से। मतलब मेरी बंदी थी वो 6 साल से मैं उसके साथ रिलेशनशिप में था। शी वॉज मोर क्वालिफाइड, मोर इंटेलेक्चुअल एज कम्पेयर टू मी। अच्छा, उसका एक हमेशा से ड्रीम था कि आई वॉन्ट टू गो एंड सेटल इन ऑस्ट्रेलिया। उसने मुझसे बोला कि कैन यू, अच्छा वो पढ़ाई में वैसे तो तेज थी बट फैमिली बैकग्राउंड से बहुत साउंड नहीं थी। सो शी यूज टू आस्क मी कि क्या मैं उसकी फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं उसका वर्क वीजा लगवाने में हेल्प कर सकता हूँ। सो मैं पढ़ाई में तो तेज नहीं था लेकिन मैं इन सब चीजों में जरूर तेज था। सो दैट इज हाउ आई यूज टू हेल्प हर। करते करते टाइम निकलता गया, सम हाउ आई मैनेज टू गेट दैट वर्क वीजा फॉर हर। अच्छा, और हमारी म्यूचुअल बात ये, डिस्कशन ये हुआ था कि वो ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल हो जाएगी, देन She'll call me to there, to that place and get settled over there.
1: अच्छा, because अगर उसे वीजा मिल जाएगा then आपकी उससे शादी हो जाएगी, तो उस वर्च्यू से आपको पार्टनर वीजा मिल जाएगा।
2: मेरे मन में तो ऐसा ही था कि PR मिल जाता, बट शायद उसके मन में ऐसा नहीं था।
1: क्यों?
2: वो ऑस्ट्रेलिया चली गई, वो वहाँ सेटल हो गई, एंड व्हेन आई आस्क्ड हर कि यार अब तुम तो वहाँ वेल सेटल्ड हो, यू आर अर्निंग गुड, सो कैन आई ऑल्सो कम ओवर देयर, तो उसने काफी हफ्ते हुए थोड़ा सा स्माइल के साथ बोला कि यार अंकित अब वो कनेक्शन नहीं रहा यार।
1: व्हाट?
2: यस, जैसे आपने वर्ड बोला इसी तरीके से मेरे मुंह से भी निकला था।
1: ऐसे ही मतलब उसने बोला कि अब कनेक्शन नहीं रहा, तो तूने मेरे लिए इतना सारा मेहनत किया है, अब तू रहे इंडिया में और मैं बसूंगी ऑस्ट्रेलिया में तेरे पैसों पे।
2: वो मेहनत, वो पैसे, वो साल सारी बर्बाद हो गए एक तरह, लेकिन ठीक है, साथ में रही कुछ सीख।
1: Dude, this is crazy. मतलब मैंने तो अपने बॉयफ्रेंड्स के कपड़े धोए हैं, उनके रेंट दिए हैं, उनके मम्मी पापा के पैसे भिजवाए हैं घर कि भाई बेचारा कमा नहीं रहा इस महीने, मैं भेज देती हूँ, बट आपने तो 6 साल ये जो अब पता नहीं कितने कर्मा बोनस पॉइंट्स कमाए हैं आपने। अंकित, वैसे तो मैं एक कॉल के ड्यूरिंग, अनलेस इट्स अ कन्फेशन कॉल, ये नहीं करती हूँ, बट दिस वन इज फॉर यू।
3: यू've been roshified.
1: तू तो मुझसे भी गया गुजरा है यार। It was amazing talking to you, यार।
2: Same here, Roshi.
1: Such a pleasure, अंकित। और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही बेचारे अंकित की तरह और बेचारी मेरी तरह आपके रिलेशनशिप्स में आपने काम ज्यादा किया, प्यार कम मिला है, Why don't you hit me up? That's what we're discussing today. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, It's hot.

आता है ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: Mirchi. It's hot.
1: तेरी मम्मी की जय

है पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s-2000s का इंडी पॉप क्लासिक। सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे गिरा ये गाना, फीचरिंग ज़ारा खान एंड स्केल्स। गाने का नाम है मूव बॉडी। दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। काउंटडाउन की शुरुआत with Move Body on Gana number 10. At RJ Kanega on Instagram par koi gana share karna, koi baatein batani ho, bindas hit me up. Stay tuned for the full countdown. This is Move Body playing right next for you only on Gana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanega. Enjoy. Number 10.

0: बहुत कुछ हुआ, क्या हुआ पता नहीं। ज़ारा खान का गाना दैट वाज मूव बॉडी दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। ये गाना जब इस काउंटडाउन से बाहर भी हो जाएगा तो शायद याद नहीं रहेगा, बिकॉज इट डिड नॉट मेक मी फील एनीथिंग एंड फीलिंग इज एवरीथिंग।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: आई सेड व्हाट आई सेड, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। दिस शो इज अबाउट द सॉन्ग्स व्हिच मेक यू फील समथिंग। पॉप सॉन्ग्स जो आर्टिस्ट अपनी आजादी से अपनी कहानी सुनाने के लिए लिखते हैं। किसी बड़ी फिल्म निर्देशक एक्टर एक्ट्रेस के लिए गाने नहीं बनते हैं, पर हर तरह के गाने होते हैं। कुछ मासी एंड कुछ ऐसे गाने जो शायद इतने बड़े स्केल पे नहीं फटते, लेकिन जितने लोग उन्हें सुनते हैं वो कुछ फील करने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक गाने को आज हम शाउट आउट देने वाले हैं। गाने का नाम है तारे बाय फरक। इससे पहले कि मैं वो गाना चलाऊं, आई वांट यू टू थिंक समथिंग। सोचो एक परिंदा पिंजरे में इतने दिन रह रहा है कि जब दरवाजा खुला तो उड़ना ही भूल गया। जिंदगी भर जिस आसमान को देखता रहा, अब जब वो आसमान उसके सामने है, उसे डर लगने लगा कि अभी आगे कैसे जाना है, पहला कदम कैसे लेना है। एंड एक्चुअली ये परिंदे की बात ही नहीं है, ये हम सब हैं। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं, टू बी ऑनेस्ट, एक चुल होती है ना, एक छोटा सा कीड़ा छुपा बैठा है। कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर कोई कलाकार, फिल्म, पेंटिंग, कोई आइडिया जिसका बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। पर हमने क्या किया, उसको लेके सारी विशेस को एक अलमारी के अंदर डाल दिया कि चलो पहले जिंदगी बना लेते हैं फिर सोचेंगे। अब वो अलमारी बंद ही रह गई और वो सपना अंदर ही रह गया। लेकिन मान लो एक दिन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वो जो सारी विशेज हैं वो पूरी हो गई, अलमारी खुल गई, सपना बाहर आ गया, जो परमिशन चाहिए थी वो मिल गई, जो पैसा चाहिए था, वक्त चाहिए था, वो आपके सामने है, आसमान दिख रहा है खुला सामने। तो फिर सोचने वाली बात है कि क्या मैं और आप एकदम उड़ जाएंगे या उस दरवाजे को देखते ही रहेंगे और डर जाएंगे उस परिंदे की तरह, जो अब इतना यूज्ड टू हो गया है अपनी सिचुएशन से, अपने सर्कमस्टेंसेस से, कि आज़ादी कैसी लगती है वो भूल ही चुका है। इसका कोई सही जवाब नहीं है और आपको मुझे तो बिल्कुल नहीं बताना है, पर सोचने वाली बात है। और यही सोचते सोचते अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ये गाना बिल्कुल आपको उसी कश्मकश में लाके खड़ा करेगा। पहचान छोड़ दी जीरो से दोबारा शुरू करने वालों के लिए, आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे। It's playing right next for you on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।
1: गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना।

0: यार ये गाना ऐसी फील्स को हिट करता है जो जेन्युइनली मैंने छुपा दी थी अपने अंदर। गाने का नाम है तारे बाय फरक, साथ में उनकी आवाज है शाश्वत बलान की। अभी सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है, अपने अंदर के उस छुपे हुए आर्टिस्ट को निकालो। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ दैट जो भी आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, व्हाटएवर यू डू, अगर आपको आपकी विश पूरी करने का एक चांस मिल जाए तो क्या करोगे, क्या है वो अंदर की चिल, @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। हर्ष नसी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है साडी सुन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके साडी सुन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 9। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री, गाने का नाम आरजू बाय नूर खान एंड मधुर एक्सो। आरजू ने डेब्यू किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: Number 9।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: एश किंग की आवाज में। गाने का नाम है किनिया सोनी। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले संजू राठौड़ की आवाज में हमने सुना बैंगल्स। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर अ गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। एंड आज मैं जिस आर्टिस्ट से आपको मिलवाना चाहती हूँ, ट्रस्ट मी, इनके गाने को सुनने के बाद आप ये सवाल पूछोगे कि यार कनिका, इससे पहले क्यों नहीं रिकमेंड किया। आर्टिस्ट का नाम है खोसला रघु। इस नाम में दो आर्टिस्ट हैं, ऋषभ रघुवंशी एंड संचित खोसला। टुगेदर दे मेक खोसला रघु। इनकी स्टोरी इज स्टफ ऑफ ड्रीम्स। ये दो दोस्त हैं, बोर्डिंग स्कूल में साथ में पढ़ते थे। एंड आपने भी अपने दोस्त से कभी तो कहा होगा कि यार साथ में कुछ शुरू करते हैं, साथ में म्यूजिक करते हैं, साथ में ये करते हैं, और कहीं ना कहीं वो रह जाता है कुछ लोगों का। पर संचित एंड ऋषभ एज आर्टिस्ट, हम सबका वो सपना जी रहे हैं एंड दे आर सो गुड एट व्हाट दे डू। कोई बहुत बड़ी बैकिंग के साथ उन्होंने शुरू नहीं किया, काफी ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग एंड देयर अबिलिटी टू कनेक्ट विद देयर ऑडियंस। गानों में आपको फुल कंटेम्प्रेरी पॉप, क्लासिकल, हैवी वोकल्स, एवरीथिंग दैट मेक्स अस फील है कि कौन से वाला गाना है, वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। इट साउंड्स वेरी न्यू एंड मॉडर्न येट रूटेड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल। आई रिमेंबर मैनी कॉन्वर्जेशंस विद बोथ ऑफ देम। एंड वो कभी भी ट्रेंड्स के पीछे भागते ही नहीं है, दे जस्ट मेक द सॉन्ग्स जो उन्हें पसंद हैं। एंड उनके कई सारे गाने इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी ट्रेंड कर चुके हैं, सो येस दे आर ट्रेंड सेटर्स। जो गाना आज हम स्पॉटलाइट करने वाले हैं, उस गाने का नाम है बेवजह। ये उस पहले वाले प्यार की बात है जो धीरे से ना आपकी पूरी दुनिया पे टेक ओवर कर लेता है। उनकी राइटिंग, म्यूजिक बहुत ऑनेस्ट है। अगर आप इंस्टाग्राम पे इन दोनों को देखेंगे तो जिस तरह से वो म्यूजिक बनाने के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, वो भी बहुत ऑनेस्ट है। आई स्वेयर मैंने कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं देखे जो अपने फैंस के साथ ये तक शेयर करते हैं कि इस गाने को बनाने के पैसे कितने लगे, इसका हमने कितना कमाया, अगर आप ये शुरू करोगे तो ये गलती मत करना। That's how you build loyal listeners. And Khosla Raghu, Gaana Indie Top 10 ki taraf se super mad respect to you guys. Apne radio sets ki volume badha lijiye. Gaane ka naam hai Bewajah. Khosla Raghu ki nayi album ka pehla gaana. It's playing right next for you only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: जोरदार रघु का नया नवेला गाना। गाने का नाम है बेवजह, फीलिंग्स हैं बिल्कुल की दिल है जो मानता नहीं। एट आरजे करेगा इंस्टाग्राम पर जाओ, कोई गाना आर्टिस्ट जिन्हें आप स्पॉटलाइट देना चाहते हो मेरे साथ आके शेयर करो। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। अगले वाला गाना इज अनीश सरकार, हृदय का उड़ी उड़ी। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 5।

शरारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या है? मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज नहीं, उसका मुखड़ा भी नहीं। इस गाने की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेंथ है, उसके वो पहले कुछ सेकंड्स जहाँ गाना बस शुरू होता है और आपका दिमाग तुरंत बोलता है, ओह यस, दिस इज शरारत।

Am I right or am I right? यार मुझे लगता है कि म्यूजिक की दुनिया चुपचाप बदल रही है। आज गाने का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका हुक बन गया है, क्योंकि वही रील्स पर और शॉर्ट्स पर ट्रेंड करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था द कंपोजर्स गाने में सबसे ज्यादा प्यार उसकी शुरुआत पर खर्च करते थे। एक इंट्रो जो बिना एक भी लफ्ज बोले अपनी पहचान बना लेता था।

बस इतना ही, ना वोकल्स ना लिरिक्स। फिर भी अगर आप 2008 में थे तो आपको पता था हाथू है। शायद इसलिए कुछ इंट्रोस सिर्फ म्यूजिक नहीं होते, वो मेमोरी के फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। एक बार सुन लो और सालों बाद भी इसे पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। वैसे ही इस हफ्ते नंबर 4 पर जो गाना है, उसकी पहचान भी उसका इंट्रो ही था, चुनरी चुनरी। लेकिन जिस गाने की हम इतनी बात कर चुके हैं, जिस गाने का मैं इतना जिक्र कर चुका हूं, दैट इज गोइंग टू बी माय पिक ऑफ द वीक। जन्नत की पूरी एल्बम में शायद सबसे अंडररेटेड ट्रैक, लेकिन मेरे लिए सबसे प्यारा। वही इंट्रो जो दिल पर अब भी दस्तक दे रहा है, सॉन्ग बाय माय ऑल टाइम फेवरेट सिंगर के प्रीतम दा की धुन। हाँ, तू है।

और दूसरी हिट फिल्म का सीक्वल आ चुका है वेलकम धमाल दे दे प्यार दे। देन यू आल्सो गॉट सम कल्ट क्लासिक्स लाइक बॉर्डर एंड गदर। एंड लगता है कि बॉलीवुड को एक ही चीज का नशा है एंड दैट इज फ्रेंचाइजेस। लेकिन इतने सारे सीक्वल्स के बीच एक नाम है जिसकी कमी हर साल और ज्यादा महसूस होती है और छुपती है। धूम जैसे फिल्म कहां थी, ये स्टाइल था, एटीट्यूड था। पहली धूम में जॉन अब्राहम ने बाइक्स को कूल नहीं बनाया, उन्हें एस्पिरेशनल बना दिया। सबको एक सुपर बाइक चाहिए थी। फिर आए ऋतिक रोशन और धूम 2 ने फ्रेंचाइज को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। डूड ऋतिक नेवर लुक्ड एज सेक्सी एज ही डिड इन धूम 2। एंड उसके बाद 7 साल बाद सिर्फ खामोशी। यस, आमिर खान की धूम 3 आई जरूर, लेकिन वो दीवानगी वापस नहीं आई। और हाल फिलहाल आप सुन रहे होंगे कि इस सीरीज को रीबूट करने की प्लानिंग चल रही है। रणबीर कपूर का नाम डिस्कस हो रहा है। फिर ये पता लगता है दैट स्क्रिप्ट की वजह से रणबीर भी एग्जिट कर गए। सच कहूं, मुझे नए विलन की बिल्कुल फिक्र नहीं है। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जिस फ्रेंचाइज ने हिंदी सिनेमा को इतना स्वैग और इतना कूल दिया, उसे सिर्फ कमबैक नहीं, ब्लॉकबस्टर कमबैक मिलना चाहिए। सो YRF, टेक योर टाइम, जितना वक्त लेना है आप ले लो, बस धूम को स्पाई यूनिवर्स वाले रास्ते ना ले जाना। तब तक YRF का दिया एक और सुपरस्टार जिसने शुरुआत की थी विद बैंड बाजा बारात, आज बॉक्स ऑफिस पर सबकी बैंड बजा रहा है। एक बार फिर माय मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ लास्ट ईयर, इट्स स्टिल नंबर 1, दिस इज गहरा हुआ स्टारिंग रणवीर धुरंधर सिंह। नंबर 1।

0: एक और हफ्ता और गैरा हुआ फिर से नंबर वन। सच कहूं लगता ही नहीं कि धुरंधर का मैजिक बिल्कुल फेड हुआ है। इस एपिसोड में वैसे मुझे बहुत मजा आया, मेमोरीज की बात की, नई ट्यून्स की बात की और उन कहानियों की भी जो सिर्फ फिल्मों में नहीं हम सबके अंदर रहती हैं। आई होप यू लाइक द एपिसोड एज वेल। अगली बार फिर मिलेंगे हियर ऑन द मिर्ची टॉक 20। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mitchy. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले

0: Radio Mirchi.
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और चलो देखते हैं कि आज का मौसम क्या मूड बना रहा है। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 78 डिग्री फारेनहाइट और स्काई जो है वो मोस्टली क्लाउडी है, लेकिन हवा जो है मस्त चल रही है, इसीलिए एक्चुअली फील हो रहा है 75 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। मतलब आज एसी फ्री में ऑन है, तुम्हारा पावर बिल नहीं आने वाला है। आज का हाई जाएगा 82 डिग्री फारेनहाइट तक और लो रहेगा 71 डिग्री फारेनहाइट तक, एंड फील होगा 69 से लेकर 80 डिग्री फारेनहाइट के बीच में। तो वेदर कभी कभी फिल्टर लगाकर आता है जस्ट लाइक एनी वन ऑफ अस। और हाँ, अराउंड 2:30 बजे के आसपास यानी 2:30 PM पर बारिश के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। अगले 24 आवर्स में लगभग 7 मिलीमीटर्स की बरसात एक्सपेक्टेड है। लास्ट 24 आवर्स में 3 मिलीमीटर्स की बरसात ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज क्लाउड्स ने ओवरटाइम करने का अप्रूवल दे दिया है, तो अपना अम्ब्रेला साथ में कैरी करना, और साथ में कैरी करना अपना SPF 50+++ एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, यानी कि ढेर सारा पानी पीना है, एंड ऑफ कोर्स कैरी करो साथ में मिर्ची का एटीट्यूड। मिर्चीदार बनाएंगे तुम्हारे दिन को और ज्यादा। अभी आगे बढ़ते हैं मिर्चीदार गानों की तरफ। कनेक्ट करो मुझसे मिर्ची प्रिस, इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और टाइम हो चुका है क्विक टाइम ट्रैवल का. बिकॉज ऑन दिस डे सालों पहले क्या हुआ था ये पता करना भी तो जरूरी है. सबसे पहले चलते हैं 1492 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से तीन शिप्स लेकर निकले थे, सांता मरिया, पिंटा एंड निनिया. वैसे तो वो एशिया ढूंढने निकले थे लेकिन कैरेबियन पहुंच गए. मतलब ये हिस्ट्री का पहला गूगल मैप्स पे गलत टर्न ले लिया वाला मोमेंट रहा होगा. 1914 में जर्मनी ने फ्रांस के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया एंड वर्ल्ड वॉर वन ऑफिशियली शुरू हो गया. Fast forward to 1949, basketball lovers, this one's for you. BAA और NBL मर्ज हुए और जन्म हुआ NBA का. 1958 में न्यूक्लियर सबमरीन USS Nautilus ने हिस्ट्री क्रिएट की, पहली बार नॉर्थ पोल के नीचे अंडर वाटर ट्रेवल कम्प्लीट करके. और 1960 में निजायर बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रांस. तो देखा, एक ही दिन में कितनी अलग अलग कहानियां हुई थी. अगर तुम्हें भी कुछ ऐसा पता है तो मुझे बताओ. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. और अभी के लिए चुपके बैठो, मिर्ची दर बैंगर्स कमिंग अप राइट योर वे. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर कम्यूट थोड़ा सा छोटा लगता है, कॉफी थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग लगती है और होम सिकनेस बिल्कुल नहीं लगती है। अब वेदर यू आर ड्राइविंग टू योर वर्क या फिर घर पर बैठकर तुम अपने ऑफिस के काम कर रहे हो, या फिर अभी तक ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करना शुरू नहीं किया है, या फिर अभी उठे ही नहीं हो, जो कुछ भी कर रहे हो अगले कुछ घंटों तक मिलेगा तुमको यहाँ पर मस्त मिर्चीदार बैंगर म्यूजिक, फन स्टोरीज, थोड़ा सा गॉसिप, अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स एंड ऑफ कोर्स मैं बोले तो प्रिसला की कंपनी। तो चलो वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लो, स्माइल को थोड़ा सा चढ़ा लो और अब शो शुरू करते हैं जिसका नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हे देयर, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब टाइम है सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का ग्रैंड फिनाले ग्लासगो में हो चुका है और स्टेज पर इंडिया का फुल ऑन कल्चरल स्वैग देखने को मिला है। एक्ट्रेस मनुषी चिल्लर ने वंदे मातरम पर परफॉर्मेंस दी, सिंगर शंकर महादेवन और उनके बेटों ने भी ऑडियंस को म्यूजिकल ट्रीट दिया और सबसे खास बात यह है कि ऑफिशियल बैटन अब अहमदाबाद के पास है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की होस्टिंग इंडिया करने वाला है। वैसे मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा, इंग्लैंड सेकेंड पर, कनाडा थर्ड पर और इंडिया ने 13 गोल्ड के साथ 39 मेडल्स जीतकर फोर्थ प्लेस पर फिनिश किया है। नंबर टू पर कनाडा के कैलगरी में इंडियन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में एडमिशन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ लिया था कि उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी कि PGWP मिलेगा। अब परमिट एलिजिबिलिटी को लेकर कंफ्यूजन और रिजेक्शन के बाद वो अथॉरिटी से क्लैरिटी और रेजोल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं। सिचुएशन डिवेलपिंग है और सबकी नजर अपडेट्स पर बनी हुई है। एंड फाइनली रिपोर्ट्स के मुताबिक फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड होर्हिना रोड्रिगेज इस सैटरडे मदीरा में शादी के बंधन में बंध सकते हैं। एक डिकेड पुरानी लव स्टोरी और अब फाइनली शादी की हेडलाइंस। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में। स्टे कनेक्टेड विद मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और आज दिल गार्डन गार्डन कर देने वाली स्पोर्ट्स अपडेट लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। टीम इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में टोटल 39 मेडल्स जीतकर एक जबरदस्त कैंपेन कंप्लीट किया है, और हमारे T20I कैप्टन श्रेयस अय्यर ने पूरी इंडियन कंटिंजेंट को सलूट करते हुए कहा है कि दिस इज इंडियन स्पोर्ट्स at its finest. उन्होंने स्पेशली हमारे बॉक्सर्स की तारीफ की है जिन्होंने ग्लासगांव में गोल्ड जीत कर तिरंगे का मान और भी ऊंचा कर दिया है। सच बोलो तो यार, तुम फॉरेन कंट्री के किसी भी कोने में हो या फिर ऑफिस पार्किंग लॉट से चाय या कॉफी पीते हुए मुझे सुन रहे हो, जब इंडिया जीतता है ना तो एक सेकेंड के लिए सबको लगता है यार ये मेडल थोड़ा सा मेरा भी है, है ना? और अब सेलिब्रेशन की बात निकली ही है तो स्पार्कलिंग अपडेट भी सुन लो। तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स अब है 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, और तुम्हारे पास अगर 18 कैरेट्स या उससे ऊपर का पुराना गोल्ड रखा है तो उसे लेकर आओ, एक्सचेंज कराओ 0% डिडक्शन पर, एंड ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। बस ये याद रखना कि मेडल जीतना जितना मुश्किल है उतना मुश्किल नहीं है अच्छा डायमंड ढूंढना, क्योंकि वो तनिष्क पर अवेलेबल है। अभी फिलहाल अवेलेबल है तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स, कमिंग अप राइट योर वे ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

आज अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबसे पहले काम करो, एज को काउंट मत करो, ब्लेसिंग्स को काउंट करो, और केक का साइज जो भी है दिल का साइज बड़ा होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स की तरफ से। तुम्हें आज हैप्पी वाला बर्थडे है, सेलिब्रेट करने वाले तुम तो हो ही, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ तुम्हारी तरह के रॉक स्टार्स और भी है। उनके नाम क्या है, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले वी गॉट मार्था स्टूअर्ट, एंड देन वी गॉट लेजेंडरी एक्टर मार्टिन शीन, साथ में मेटालिका के पावर हाउस फ्रंट मैन जेम्स हेटफील्ड, हिप हॉप आइकॉन डीजे स्पिंडरेला और लॉस्ट एंड एंटमैन फेम एक्ट्रेस एवेंजेलिन लिली। मतलब अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी बर्थडे है ना, तो गेस्ट लिस्ट ऑलरेडी काफी इम्प्रेसिव हो गई है, बस केक कटने का इंतजार है। पिक्चर्स तो मुझे भी भेज सकते हो मेरे हैंडल पर, जो कि है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। और अब बर्थडे गिफ्ट की बात चल रही है, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, आरके जूल्स लेकर आए हैं तुम्हारे लिए स्पार्कलिंग सरप्राइज। शॉप करो उनके एक्सक्विजिट कलेक्शन में जाकर स्टनिंग ज्वेलरी, एंड यू कुड गेट अ फ्री $250 का गिफ्ट कार्ड। आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। और अगर तुम अपने शाउट आउट भेजना चाहते हो तो मुझे डीएम करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

सैंडविच हैमबर्गर या बटर रोल सबसे मैं हूँ टेस्टी सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल गुस्सा तेरी गोली जैसा बोल तलवार से दिल का शिकार कर हनी जरा

0: Hey there, मैं हूँ प्रसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब सुनने वाले हो गोल्ड का रेट अपडेट।
1: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड रीडिंग एट $4,050, $4,050 पर ट्रे हाउस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, नेचुरल विद लाइफ टाइम वारंटीज एंड सर्टिफिकेशन, एंड GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, एनी शेप्स, एनी कलर, एनी साइज। राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड एंड डायमंड में इन्वेस्ट करें, और हमारी स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसके अंदर 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट में आज एक भी पैसा नहीं देना है। अप्रूव होने पे राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड का प्राइस लॉक करें, 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी घर लेके जाएं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दें बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी के। आइए RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड का लेटेस्ट रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033-647-244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और टाइम हो गया है मिर्ची आवो का 3 का, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से व्हाट्सएप कुछ यूजर्स को अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रोफाइल में ऐड करने का प्रॉम्प्ट दिखा रहा है इन इंडिया। मैसेज में लिखा है कि इंडिया के अपकमिंग लॉज के चलते एज इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है। अभी तक व्हाट्सएप ने ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है कि ये फीचर सबके लिए रोल आउट होगा या एग्जैक्टली कैसे काम करेगा। नंबर 2 पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने इंडिया में ओपनिंग वीकेंड पर जबरदस्त कलेक्शन किया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म ने रेकॉर्ड ब्रेक ओपनिंग वीकेंड बिजनेस किया है एंड टॉम हॉलैंड का वेब स्लिंगर फिर से बॉक्स ऑफिस पर छा गया है। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: It's hot. मिर्ची. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम टू राशि जोन का पहला पार्ट.
0: मिर्ची राशि जोन.
1: इट इज यानी मेष राशि. दिमाग में जो क्रेजी आइडियाज आ रहे हैं उन्हें इग्नोर मत करो, उन्हीं में नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी छुपी हो सकती है. लकी कलर फॉर यू इज क्रिम्सन, लकी नंबर इज 17. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज ऑनेस्टी ही तुम्हारा सुपर पावर है. सच बोलना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है लेकिन बाद में आई टोल्ड यू सो बोलने का मौका भी मिलेगा. लकी कलर फॉर यू इज फॉरेस्ट ग्रीन, लकी नंबर इज 26. जेमिनी यानी मिथुन राशि, अगर कोई दोस्त एडवाइस दे तो पहले सुन लो ना यार, आई रोल बाद में कर लेना, हो सकता है वो बात काम की हो. लकी कलर फॉर यू इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 5. कैंसर यानी कर्क राशि, कैंसर यानी कर्क राशि, मनी मैटर्स को पोस्टपोन मत करो. बिल्स हैरी पॉटर की तरह डिसअपीयर नहीं होते बेटा, आज एक्शन लो और तुम्हें कल इसका रिएक्शन मिलेगा. लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर, लकी नंबर इज 32. लियो यानी कि सिंह राशि, सुपर हीरो बनना अच्छा है लेकिन आज हेल्प मांगना और भी अच्छा होगा. टीम वर्क का असली पावर यही मूव है. लकी कलर फॉर यू इज गोल्ड, लकी नंबर इज 9. वर्गो यानी कन्या राशि, आज कुछ ऐसा होगा जो लॉजिक को चैलेंज करेगा. हर चीज का एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं होता है, बस ऑब्जर्व करो. लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 14. आगे की राशियां लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. तब तक के लिए तुम एंजॉय करो मिर्ची तार बैंगर्स एंड गो एंड चेक आउट माय सोशल्स. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो कंप्लीट करते हैं हमारा राशि जोन। पार्ट टू इज आउट हियर।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि, इस वीक पीस मोड में होने वाले हो, तब तक किसी भी आर्ग्यूमेंट को आईपीएल ऑक्शन मत बना लेना। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 21। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, जो फील कर रहे हो वो फेस पर लिखा हुआ है, तो पोलाइटली ऑनेस्ट रहो और सॉल्यूशंस भी दो। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, सबको एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी रिजल्ट्स ही बेस्ट रिप्लाई होते हैं। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 30। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहना स्मार्ट रहेगा, हर इन्फॉर्मेशन शेयर करना जरूरी नहीं होता है। ऑफिस गॉसिप एफएम मत बनो। लकी कलर इज चारकोल ग्रे, लकी नंबर इज 11। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, एक दोस्त आज तुम्हें प्लेजेंटली सरप्राइज कर सकता है, ओपन माइंड रखो और हार्ट को भी ओपन रखो। लाइफ के बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। लकी कलर इज अक्वा, लकी नंबर इज 24। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, टू डू लिस्ट का पहला काम सुबह सुबह निपटा लो, मोमेंटम मिल गया है तो आज तुम अनस्टॉपेबल हो। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 6। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट टू। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

बस यार आज का मिर्ची मॉर्निंग्स चाय की तरह, कॉफी की तरह, ब्रेकफास्ट की तरह खत्म हो गया है। बातों को यहीं पर फुल स्टॉप देने के पहले एक लास्ट बात बताकर जाती हूँ। हमारे इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा ने पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट वन डे टूर्नामेंट में बोलिंग अटैक को लिटरली साइड सीइंग पर भेज दिया था। सिर्फ 91 बॉल्स में 233 रन्स, उसमें से 25 सिक्सेस एंड 15 वर फोर्स। मतलब बॉलर को भी बस एक ही चीज क्लियरली दिख रही होगी, बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई। और सिर्फ बैटिंग ही नहीं, भाई ने दो विकेट्स भी लिए हैं। टोटल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है ये तो। अमृतसर ने 533 रन्स बना दिए और मैच 220 रन्स से जीत लिया। अब इसको कहते हैं मंडे का मोटिवेशन, वो भी क्रिकेट एडिशन। अब चलो ये मोटिवेशन तो तुम रख लो, मेरी तरफ से एक चैलेंज भी रखो। ऑफिस में आज अगर इतनी ही एनर्जी से काम कर लिया, चलो मेरी तरफ से एक चैलेंज लो, ऑफिस में अगर इतनी ही एनर्जी से काम कर लिया जितनी एनर्जी से अभिषेक ने बैटिंग में कर दिखाया है, तो शाम की चाय एक्स्ट्रा टेस्टी लगने वाली है। तो आज ट्राई जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, मेरे साथ मॉर्निंग स्पेंड करने के लिए। अगर शो का कोई मोमेंट तुम्हारे फेस पर स्माइल लेकर आया है तो मुझे पक्का से फॉलो करना। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना, उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, की 90s की याद का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई मीन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था। तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओह नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा। पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ। आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी, इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सबके सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं। ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार, तभी तो वेलकम की इतनी कदर है। लेकिन बताए क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी। एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी। इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन की ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई। हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी। मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे। एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है। मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वॉज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम। एंड यू नो व्हाट, एक बड़ी इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था, यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम। किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम। लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था। एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाडवाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है। एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम। और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म। फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए। फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम। आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार। दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए, प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए। जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: sara ka divana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
1: मिर्ची चैट रूम।
2: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़े इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो पेंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश टू द हॉस्पिटल। लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट। सारा ज़माना,
1: सारा का दीवाना। मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हम सबको पता था कि
3: जस्सी जस्सी कोई नहीं।
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
2: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And the show जैसी जैसी कोई नहीं was a hit, क्योंकि ये शो बात करता है अबाउट अ गर्ल हु इज अ गीक। और गीक्स को ट्रेंड में लाते हुए दिस शो ट्राइड चेंजिंग द आउटलुक कि दिमाग हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अरमान सर पर क्रश करती जस्सी के दिलों की धड़कन के साथ हमने भी उतार चढ़ाव किए हैं यार। एंड आई रिमेम्बर कैसे वी यूज्ड टू फील बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक जब अरमान और जस्सी के बीच कोई मोमेंट आया करता था। और सबसे सही बात अबाउट द शो वॉज कि कोई नहीं जानता था कि जस्सी रियल लाइफ में कैसी दिखती थी। एंड इट वॉज केप्ट टू बी अ बिग सीक्रेट। और उस टाइम पर तो ज्यादा टफ भी नहीं था बिकॉज पेपराज़ी एंड सोशल मीडिया तो था नहीं। और जब जस्सी का मेकओवर हुआ एंड वी गॉट टू सी मोना सिंह टू बी द फेस बिहाइंड जस्सी, ऑल वर इन ऑफ हर। और मुझे याद है कैसे हमने उस एपिसोड को किसी भी कीमत पर मिस ना करने की कसम खा ली थी। काफी शोज आए, काफी शोज गए, लेकिन ये बात तो सच है यार कि जस्सी जैसी कोई नहीं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अनुराधा जी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म साजन। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। अय हाय हाय, देखो पता है 90s का जमाना, तो मुझे नहीं पता कि डेटिंग के लिए कितना सेफ था और कितना यकीन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। आज की बात मैं जरूर कर सकती हूँ। आज के टाइम पर अगर कोई ऐसा कह देना कि कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, भाई तुम किसी की भी कसम खा लो, मुझे ये पता है कि तुम्हारा डाइट फूड कसम ही है, तुम्हारा चीट फूड भी कसम ही है, और जो तुम्हारा मेन कोर्स यूजुअली तुम खाते हो वो भी कसम है। यानी कि आजकल उठते बैठते सब लोग कसम ही खा रहे होते हैं, और मुझे इस डिश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना, क्योंकि वो किस तरीके की कसम खा रहे होते हैं ना, हमें उसकी क्वालिटी का बिल्कुल नहीं पता है। आप क्या बोलते हो, आप कर लेते हो यकीन इस कसम नामक डिश का जो आजकल सब खाते रहते हैं?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। चलो यार, ये कसमें खा के नहीं तो सुन के पेट तो काफी भर गया है। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स 90s के गानों के ज्ञान की तरफ, जहां पर दो गानों को मिक्स करके मैं चला देती हूँ और आपको पहचानना होता है कि ये जो दो गाने हैं ये हैं कौन से। यहाँ टेस्ट होता है आपके ज्ञान का। तो यानी कि इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ध्यान का। तो ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए कि ये दो गाने कौन से हैं। Here we go।

बस जी, अब मुझे डीएम करना है और माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि ये दो गाने कौन से हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कोयला मूवी का एक गाना था बदन जुदा होते हैं। वेल, ये गाना शायद हमें आज याद भी है और नहीं भी है, हमने कभी सुना और उसको अनसुना भी कर दिया। लेकिन इस गाने में एक म्यूजिक का पीस है जो कि मूवी में भी काफी सारे सीन्स में फिर इस्तेमाल हुआ है, और ये जो म्यूजिक का पीस है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। लेकिन यही म्यूजिक का पीस ओरिजिनल नहीं है बाबू मशाय।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजेश रोशन की दी गई म्यूजिक का ये जो गाना था, विच गोज दिस वे।

is actually not an original piece of music. Vangelis karke there was this music composer jisne bahut hi khoobsurat music diya hai and inke music se Rajesh Roshan aksar kafi inspired rahe hain. सिर्फ वैंगेलिस का यही म्यूजिक का पीस ही नहीं, उन्होंने काफी सारे और म्यूजिक के पीसेस भी उठाए हैं अपने गानों के लिए. एंड ये वाला जो म्यूजिकल पीस है दैट इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज, व्हिच साउंड्स जस्ट ब्यूटीफुली अमेजिंग.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई फिल्म या गाने कहीं से कट कॉपी पेस्ट है तो डीएम कर दीजिएगा मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आज का के ड्रामा का डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2000s का के ड्रामा।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ऐसा नहीं है कि हम 90s किड्स के ड्रामास नहीं देखा करते थे। हम तो के ड्रामास तब से देखते आ रहे हैं जब से OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे इन के ड्रामास को इंट्रोड्यूस करने। और हमारे लिए के ड्रामास यूज्ड टू बी एकता कपूर के सीरियल्स, जो के से ही शुरू हुआ करते थे। राइट फ्रॉम क्यों की सास भी कभी बहू थी, टू कुसुम, कहीं किसी रोज से लेकर कसौटी जिंदगी की, यू नेम इट। और हमने ये के ड्रामास देखे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है तब के और अब के ड्रामास में कि तब 7 फेरे 7 दिन लेते थे, और आज के ड्रामास में शादी होगी कि नहीं ये देखने को आंखें तरस जाती हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर टीवी के शटर वाले कैबिनेट,
2: यादों को चिट्ठी।
1: क्या स्टार थे यार तुम ड्राइंग रूम के। हमारे घर में नहीं थे लेकिन जिसके भी घर में मिला करते थे ना, उस घर को विजिट करते वक्त मेरा कंसंट्रेशन तुम पर ही होता था कि क्या कमाल है यार, टीवी है लेकिन इतनी खूबसूरती से छुपा हुआ। वही बात है ना कि जिस चीज में सीक्रेसी होती है ना, उस चीज को जानने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है। मुझे हमेशा लगा करता था कि ये टीवी हमारे टीवी से अलग होगा यार, लेकिन नहीं नहीं, बाद में पता लगा कि तुम वही कलर टीवी हो जो हमारे घर पर भी था, लेकिन ऐसे एक शटर वाले कैबिनेट में खूबसूरती से छुपा हुआ नहीं था हमारे घर का टीवी। तुम में रखे टीवी पर प्रोग्राम देखना ऐसा लगता था जैसे जब थिएटर में मूवी चालू होने से पहले पर्दा उठा करता था और गिरा करता था ना, वैसी सी फीलिंग आती थी अगर घर पे बैठे टीवी की स्क्रीन चालू होने से पहले तुम्हारा शटर हटाया जाता था। बड़ा ही ग्रैंड फील होता था यार। आजकल तुम्हें पता है टीवी कितने एक्सपोज्ड है, घर की दीवार पर खुलेआम टंगे रहते हैं, बेबाक और बिंदास। तुम्हारी ग्रेस की फैन, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: काउंटडाउन शोज में बाली ब्रह्मभट्ट का जब ये गाना आया करता था तो एट दैट टाइम दिस वाज जस्ट अ मेलोडी फॉर अस। किसको पता था कि बड़े होते होते ये गाना जज्बात में तब्दील हो जाएगा।
0: मिर्ची 90s का सेट।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And 90s के दौर का बाली ब्रह्मभट्ट का एल्बम का ये गाना।
2: तेरे बिन जीना नहीं, ओ मेरी जाने वफा।
1: What a melodious track यार। लेकिन ये जो गाना आया करता था तो मुझे ये गाना इसके एस्थेटिक्स की वजह से अच्छा लगता था, इसके वीडियो की वजह से अच्छा लगता था, इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता था, कानों में ना काफी चाशनी खोल दिया करता था। लेकिन इसके लिरिक्स पे कभी ध्यान ही नहीं गया अंटिल एंड अनलेस मैं बड़ी हुई, क्योंकि ये गाना जो है वो ये कहता है कि तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा, जिंदगी भर साथ रहकर मुझे होना नहीं है जुदा। And that is such a heartbreaking statement for anyone to make, yeah. Seriously, I mean, some people जो न जाने कितने साल एक साथ बिता देते हैं and then there comes a situation जहां उनको ये decide करना पड़ जाता है कि अब वो साथ नहीं रह सकते। मतलब वो जो रोज बातें हुआ करती थी, वो जो रोज सुबह गुड मॉर्निंग होती थी, गुड नाइट उसी की आवाज से हुआ करती थी, दिन में कुछ वक्त साथ बिताया करते थे, एक दूसरे की जिंदगी जो है वो शेयर किया करते थे एक दूसरे के साथ, अब ऑल ऑफ अ सडन वो इंसान हमारे लिए स्ट्रेंजर बन जाए, ये सबसे ज्यादा दुखदाई हो जाता है यार। खुदा ना करे कि किसी के ऊपर ऐसा कहर बरसे, लेकिन क्या है कि किस्मत भी कोई चीज है, किस्मत में जिसका जितना साथ लिखा होता है ना उतना ही बिता पाते हैं उसके साथ। बट स्टिल द पॉजिटिव वे टू लुक एट इट इज कि यार जितना बिताया क्या पता उतना भी ना होता हमारी जिंदगी में तो क्या करते, एटलीस्ट ये टाइप तो मिल गया ना जो बिता लिया है, बाकी किस्मत का लिखा और ऊपर वाले का किया, उसके कहे बिना तो यार एक पत्ता भी नहीं हिलता। चलो अब यहाँ पे बहुत काउंसलिंग हो गई है, टाइम फॉर दिस गाना। जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम हराए प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझे यहाँ के अलावा ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा, पहली मुलाकात कैसी होती है? ऐसी ही तो होती है, थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ा एक्साइटमेंट। पुरानी जीन्स पे हाय, दिस इज मी श्रेया। पहली मुलाकात है तुम्हारी और मेरी, बट आई प्रॉमिस कि ये लंबी चलने वाली है, क्योंकि हम दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट है और वो है उस जमाने के गाने। तो उस जमाने के गानों के साथ उस जमाने की बातें भी मिलेंगी, लेकिन हाँ, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, जब तुम पहली बार किसी से मिलते हो, पहली बार कोई इंटरव्यू देते हो, पहली बार कोई कंपटीशन क्रैक करते हो, या जिंदगी में पहली बार जब जब जो जो होता है ना, वो बहुत ही खास हो जाता है। तो अभी कुछ गाने सुन करके वापस आओ। आज मैं बताऊंगी जब पहली बार बड़े बड़े रेट्रो स्टार्स ने, उस जमाने के एक्टर्स ने कैमरा जब फेस किया तो उनके साथ क्या हुआ। जैसे कि जब अमित जी ने ये अभी नहीं, ये गानों के उस पार। सो कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर आप श्रेया के साथ और ये आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स की पहली फिल्मों की बात की जाए जब दे फेस द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको पता है इनको अपनी पहली मूवी के लिए सिर्फ 5,000 रुपए मिले थे। तो क्योंकि आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, मैंने सोचा कि क्यों ना वो दिग्गज एक्टर्स के बारे में बात करें जिन्होंने जब पहली बार कैमरा फेस किया तो उनके साथ क्या क्या हुआ। पता है अमित जी को उनकी पहली फिल्म के लिए 5,000 रुपए मिले थे और वो भी काफी नेगोशिएशन के बाद विद टीनू आनंद। अमिताभ बच्चन जी की पहली फिल्म थी सात हिंदुस्तानी, इसके लिए उन्हें पूरे 5,000 रुपए मिले और साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया, मूवी चाहे साल भर में बने या 5 साल में बने, और उस 5 साल के अंदर चाहे अमित जी जितने बड़े भी सुपरस्टार बन जाएं, पर सात हिंदुस्तानी के लिए उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, अपने धर्मपाल जी की पहली कौन सी फिल्म थी? नहीं पता तो मैं बताऊंगी ना। वापस आओ गाने सुन करके। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: धर्म पाजी के साथ पता है इस फिल्म में कोई भी काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि तब तक कोई उन्हें जानता ही नहीं था।
1: और क्योंकि आज मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन फिल्मों की बात करें जिनसे पहली बार बड़े बड़े एक्टर्स ने, दिग्गज एक्टर्स ने अपने करियर की शुरुआत की थी। सो धर्म पाजी की पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। 1960 में ये फिल्म आई थी और उनके ऑपोजिट इस फिल्म में थी यस्टरडेज़ की एक्ट्रेस कुमकुम जी। तो धर्म पाजी ने उस टाइम पे मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि तब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती थी, इंटरव्यू में ये बोला था दैट ही विल ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू कुमकुम जी, क्योंकि उस टाइम पे ना और कोई एक्ट्रेस उनके साथ काम ही नहीं करना चाहती थी। धर्म पाजी एक न्यू फेस थे और जितनी पॉपुलर एक्ट्रेसेस थी वो किसी न्यू कमर के साथ काम करने में थोड़ा सा हिचकिचाती थी। तो ऐसे हुई थी धर्म पाजी की शुरुआत। अच्छा, और अपनी इस डेब्यू फिल्म के लिए धर्म पाजी को कितने सारे रुपए या फिर कितने से रुपए मिले, ये अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

हम तक गति सीधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

0: Mirchi. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सत्रह सत्रह सत्रह और तीनों का मिलाकर के 51। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ तो मैंने सोचा कि हमारे जो दिग्गज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है ना हिंदी सिनेमा के, उनकी भी पहली पहली फिल्मों की बात करूँ। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि धर्म पाजी की पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। आपको पता है कि इस फिल्म के लिए उन्हें कितने रुपए मिले थे? वेल, ओनली रुपीज 51, 51 रुपए। और ये भी किसी एक बंदे ने नहीं दिया था, इस फिल्म के तीन प्रोड्यूसर्स थे और उन तीनों ने मिलके 17 17 17 रुपए कंट्रीब्यूट करके धर्मपाजी की फीस निकाली थी। ऐसा धर्मेंद्र जी ने खुद एक रियलिटी शो में हाल ही में बताया था। सोचो 51 रुपीज, दैट्स इट। पुरानी जीन्स पर काका यानी राजेश खन्ना की डेब्यू फिल्म के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बताऊंगी। वापस आओ श्रेया के साथ।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म की वजह से जतिन खन्ना बने राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और क्योंकि आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उन मूवीज की बात की जाए जिससे अपना डेब्यू यानी पहली बार कैमरा फेस किया था हमारे दिग्गज रेट्रो स्टार्स ने। तो ये फिल्म थी जिससे जतिन खन्ना हमें आज राजेश खन्ना और प्यार से उन्हें काका कहते थे सब इन द इंडस्ट्री, काका मिले थे। इस फिल्म का नाम है आखिरी खत जिससे अपना डेब्यू किया था राजेश खन्ना जी ने। अच्छा, अब उन्होंने अपना ये नाम क्यों बदला, इसके पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन था। वो क्या था इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा ना ऐसे आपको सस्पेंस में छोड़ने में मुझे बहुत मजा आता है। तो गाने सुन करके वापस आओ पूरी कहानी ऑफ दिस नेम चेंज मेरे यानी श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: यही है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हाँ, तो मैं बता रही थी कि कैसे जतिन खन्ना राजेश खन्ना बन गए अपनी डेब्यू फिल्म से, यानी आखिरी खत से। सो एक्चुअली हुआ ये कि जब राजेश खन्ना लॉन्च होने वाले थे इसी फिल्म से, उसके कुछ महीने पहले एक और जतिन खन्ना नाम के हीरो ने अपना डेब्यू किया था विद द फिल्म कॉल्ड जब जब फूल खिले। अब ये वाले जतिन खन्ना को लगा कि भाई सेम नाम तो नहीं हो सकता, इंडस्ट्री में सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उन्होंने अपना एक स्क्रीन नेम रखा। वो स्क्रीन नेम था राजेश। लेकिन वो सिर्फ राजेश के नाम से फेमस नहीं हुए, प्यार से तो इंडस्ट्री में काम करते। देव साहब का डेब्यू कौन सी फिल्म से हुआ था? ये एक ऐसी फिल्म थी जिससे एक वादा भी आया। ये पूरी कहानी बस कुछ गानों के उस पार। पुरानी जींस पर मेरा नाम है श्रेया।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देव साहब की इस डेब्यू फिल्म से एक दोस्ती की शुरुआत हुई थी, दोस्ती बिटवीन हिम एंड गुरुदत्त साहब। हाय, मेरा नाम है श्रेया और पुरानी जींस पे आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पहली मुलाकात को थोड़ा और खास बनाएं, कुछ ऐसी फिल्मों की बात करें जिससे हमारे रेट्रो स्टार्स ने अपना डेब्यू किया था। तो फिर इस लिस्ट में देव साहब का नाम तो आएगा ही। देव साहब की पहली फिल्म का नाम था हम एक हैं। देव साहब कैमरे के उस पार और कैमरे के इस पार असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका में थे गुरुदत्त साहब। दोनों के बीच में दोस्ती हुई। ये दोस्ती एक वादा भी लेकर के आई जिसको बहुत सच्चाई के साथ देव साहब ने निभाया। ये वादा क्या था आपको तो पता ही है, इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं बताती हूँ। तो उस जमाने के कुछ हैंडपिक गाने हैं, उनको सुन करके वापस आओ, फिर पूरी कहानी। आई प्रोमिस। यू आर लिस्निंग टू पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: कभी तो हंसाए।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

देव साहब की पहली फिल्म से ही एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जो उनके आखिरी समय तक चली। मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन फिल्मों की बातें की जाए जिससे हमारे उस जमाने के दिग्गज स्टार्स ने अपनी शुरुआत की। अब अगर देव आनंद जी की बात करें तो उनकी डेब्यू फिल्म थी हम एक हैं। अब इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे गुरुदत्त साहब। दोनों के बीच में दोस्ती होती है और साथ में एक वादा आता है। वादा ये कि अगर कभी देव साहब आगे चल करके बड़े एक्टर बने और उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला तो उसके अंडर जो फिल्में बनेंगी उसको डायरेक्ट करने वाले होंगे गुरुदत्त साहब और एक्टिंग करने वाले देव साहब। ये वादा आगे चल करके देव साहब ने निभाया भी। जब उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला ना नवकेतन फिल्म्स, उसके अंडर फिल्म बनी 1951 में बाजी। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले उनके दोस्त गुरुदत्त साहब बने। इंडस्ट्री में ऐसी भी दोस्ती होती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया। वापस आओ, अभी तो बहुत सारी बातें बाकी है।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शमी कपूर साहब मधुबाला जी की खूबसूरती से इस कदर इम्प्रेस थे कि वो बार बार अपने डायलॉग्स ही भूल जाते थे। और क्योंकि मैं आज आपको पहली बार मिल रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन फिल्मों की बात की जाए जिससे पहली बार कैमरा फेस किया हमारे बड़े बड़े दिग्गज स्टार्स ने। तो शमी साहब की पहली साइंड फिल्म जो थी ना, वो थी जीवन ज्योति। लेकिन रेल का डिब्बा वो फिल्म थी जिससे पहली बार उन्होंने कैमरा फेस किया था, क्योंकि उस फिल्म की शूटिंग जीवन ज्योति से पहले शुरू हो गई। अब रेल का डिब्बा में ना वो ऑपोजिट मधुबाला थे, और मधुबाला जी की खूबसूरती के बारे में अगर मैं कुछ कह दूं तो भाई, तो वो क्या कहते हैं कि दिए को रोशनी दिखाने जैसा कुछ हो जाएगा। शमी साहब वो सो स्मिटन बाय मधुबाला जी इस ब्यूटी कि वो बार बार अपने डायलॉग्स ही भूल जाते थे। फिर मधुबाला जी उनके पास जाती थी, उनको कंफर्टेबल करती थी, दोस्ती की कुछ लाइनें बोलती थी, तब जा करके रेल का डिब्बा शूट हो पाई। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कहीं अगर मधुबाला जी आंखों के सामने दिख जाती तो क्या हाल होता ना आपका और मेरा। पुरानी जींस पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

एज राइटर्स जब इनकी पहली फिल्म थी उसके लिए सिर्फ 5,000 रुपए मिले थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया, आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंडियन सिनेमा के कुछ लेजेंडरी स्टार्स की पहली पहली फिल्म, पहली पहली राइटिंग, पहली पहली कहानियां, इनके बारे में बात करूं। सलीम जावेद, इनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज आई है विच इज ऑन नेटफ्लिक्स, जिसका नाम है द एंग्री यंग मैन। इस सीरीज में सलीम खान और जावेद अख्तर साहब दोनों ने बताया कि कैसे उनके पीक टाइम पे, जब उनकी सारी लिखी हुई फिल्म्स हिट हो रही थी, फिर चाहे वो शोले हो, जंजीर हो, हाथी मेरे साथी हो एंड सो मेनी ऑफ देम, दीवार हो, तब उन्हें फिल्म के एक्टर से ज्यादा यानी अमिताभ बच्चन जी और राजेश खन्ना जी से ज्यादा पैसे मिलते थे। 21 लाख रुपए वे बैक इन 70s और 80s। लेकिन जब उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी वो एक भूत की कहानी थी, इट वॉज अ गोस्ट स्टोरी, और उसके लिए इन दोनों को 5,000 रुपए मिले थे, यानी 2500 जावेद साहब के और 2500 सलीम साहब के। वहां से 21 लाख तक का सफर विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स काफी क्विक और थ्रिलिंग था। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, जल्दी से गाने सुन करके वापस आओ। और किसके डेब्यू की कहानी बताऊंगी ये तो अभी नहीं, गानों के बाद।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शादी की पहली रात का ये गिफ्ट था। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें, उस जमाने के गाने और इस जमाने की श्रेया के साथ आज पहली बार मिल रही हूँ आपको, तो आई थॉट कि क्यों ना कुछ लेजेंडरी स्टार्स की पहली पहले चेक्स, पहले पहले सैलरीज के बारे में बात करूँ। तो मैंने सबके बारे में बताया, अब मैं उनके बारे में बताने वाली हूँ जिनकी ये पहली सैलरी नहीं थी लेकिन शादी की पहली रात। शादी की पहली रात खूबसूरत मीना कुमारी और उनके शौहर कमाल अमरोही साहब। कमाल अमरोही ने उनको शादी की रात कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ जिससे पूरी दुनिया तुम्हें याद रखेगी, और वो तोहफा तुम्हारी खूबसूरती पे बनी एक फिल्म होगी। ये फिल्म बनने में 14 साल लग गए लेकिन कमाल अमरोही ने अपना वादा निभाया। उन्होंने मीना कुमारी पे बनाई पाकीज़ा, जिसे हर कोई आज भी याद करता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, गाने सुन करके कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स, यू वर लिस्निंग टू श्रेया और अब जाने का टाइम हो गया है। मैंने सोचा है कि जब भी मैं जाऊंगी ना तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी, तो चलो मेरी गाड़ी में बैठो एंड लेट्स हिट द हाईवे। सो इस हाईवे पे हम एक खास गाना कुछ खास लोगों के लिए सुनते हुए जाएंगे। तो ये हाईवे हिट उन लोगों के लिए है जो किसी से जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना तो ऑर्गेनिकली कुछ वाइब आती है, एक स्पेशल बॉन्ड बनता है, बिना कहे भी कुछ इमोशंस एक्सचेंज हो जाते हैं और फिर जब वो जाने लगते हैं ना तो आपका दिल कहता है
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आए।
0: तो ये गाना आपके लिए, और कसम देने की जरूरत नहीं है, मैं कल लौट आऊंगी। फेसबुक और इंस्टा पे मुझे ढूंढ सकते हो, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल। तो कल मिलते हैं फिर से, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

है द फिल्म इंडस्ट्री इंक्लूडिंग सम अल्टीमेट इमरान हाशमी सॉन्ग्स लाइक तेरा मेरा रिश्ता पुराना। सो बेसिकली इनका ना एक नया गाना है जो एक्चुअल में नया नहीं है। सो द बैक स्टोरी इज कि ये गाना ओरिजिनली लिखा गया था आवारापन के लिए, जिसको डायरेक्ट किया था मोहित सूरी ने, लेकिन उस टाइम डिसाइड किया गया कि नहीं आवारापन नहीं, आवारापन 2 में ये गाना इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन फिर आवारापन 2 काफी डिले होती गई एंड दिस सॉन्ग बिकेम अ फॉरगॉटन चैप्टर। और अब जब अगस्त में आवारापन 2 रिलीज होने वाली है, उसके एल्बम से 2 गाने भी आ चुके हैं जो इन जनरल ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आ पाए, तो इसी मौके पे चौका मारते हुए मुस्तफा जाहिद ने अपना ये गाना रिलीज किया। नाम है इसका ये मेरी जिंदगी, जिसमें उनकी सोलफुल आवाज वापस लेकर आई है द लॉस्ट इमोशन, रिमाइंडिंग वाई हिज मेलैंकोलिक सॉन्ग्स वंस डिफाइंड एन एंटायर एरा। और कसम से जब आप ये गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार आवारापन 2 के एल्बम में इसी इंसान को लेकर आओ ना। द नेम इज ये मेरी जिंदगी। सुनने के बाद अपने ओपिनियंस मिर्ची श्रुति से जरूर शेयर करना इंस्टा और फेसबुक पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी क्लैरिफाई, मैं तो मिर्ची फिल्मची गेम की बात कर रही हूँ यार, उसको खेलने में जो आपको आजकल मजे आ रहे हैं, बस उस मजे की शुरुआत करते हैं। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे डीएम में जाके इंस्टा पे अपना नंबर भेजना होता है, देन आई गिव यू अ कॉल एंड उसके बाद इस गेम की शुरुआत होती है। आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है सामिया। तो सामिया, अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं?
3: मैं गुवाहाटी से हूँ और मैं जॉब करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ फिलहाल तो।
0: ओके, तो आप गुवाहाटी में सुनती है मुझे?
3: हाँ।
0: चलिए फिर गेम की शुरुआत करें, तैयार हैं आप?
3: हाँ।
0: बॉलीवुड की फिल्म जिसमें टफी है।
3: हम साथ, हम आपके हैं कौन?
0: हम आपके हैं कौन में दूल्हे की साली कौन है?
3: माधुरी दीक्षित।
0: क्या बात है, माधुरी दीक्षित किस फिल्म में चक धूम धूम करती है?
3: दिल तो पागल है।
0: दिल तो पागल है में डांस ट्रूप की लीड डांसर कौन है?
3: करिश्मा कपूर।
0: करिश्मा कपूर को किस फिल्म में अपने ड्राइवर से प्यार हो जाता है?
3: राजा हिंदुस्तानी।
0: बहुत बढ़िया, राजा हिंदुस्तानी में ड्राइवर कौन है?
3: आमिर खान।
0: आमिर खान किस फिल्म में टेररिस्ट बने हैं?
3: इसमें काजल देख नहीं पाती शायद।
0: हाँ हाँ हाँ, सही है।
3: फना, फना, फना।
0: बहुत अच्छे, फना में विजुअली इम्पेयर्ड लवर कौन है?
3: काजल।
0: काजल किस फिल्म में ऑब्सेसिव लवर एंड किलर बनी है?
3: गुप्त।
0: गुप्त में दुनिया हसीनों का मेला, मेले में किसका दिल अकेला है?
3: नहीं पता, ये मैंने देखी ही नहीं है।
0: Never mind. But कसम से इस गेम को इतने मजेदार लेवल पे पहुंचाने के लिए आपको ये टैग तो जरूर दूंगी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: So my dear बाबू मोशाय, आज के शो पे हमारी पहली मिर्ची फिल्मची बनी है सामिया। अब इसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई पंग होगी।

0: कर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अरे अरे, मैं तो मिर्ची फिल्म ची गेम की बात कर रही हूँ। आपका नॉटी माइंड कहाँ भाग रहा है? चलिए चलिए, उसको वापस बुलाइए। सो आज के गेम की शुरुआत हुई है साम्या के साथ, और वो अटक गई एक पॉइंट पे, जिसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है अर्जुन, हु इज अ पायलट बाय द वे। तो यात्री अपने कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि ये मिर्ची फिल्म ची गेम एक अलग ही उड़ान भरने वाली है। तो अर्जुन जी, क्या तैयार हैं आप?
3: जरूर खेलिए, ट्राई करेंगे जरूर।
0: ओके, गुप्त में दुनिया हसीनों का मेला, मेले में किसका दिल अकेला?
3: बॉबी देओल।
0: बहुत बढ़िया। बॉबी देओल किस फिल्म में सर पे जाम रख के जमल कुड़ू करते हैं?
3: एनिमल।
0: एनिमल में हिक्की के कलर की लग्जरी गाड़ी किसको मिलती है?
3: तृप्ति डिमरी।
0: तृप्ति डिमरी के शादी की सीडी किस फिल्म में चोरी हो जाती है?
3: विक्की विद्या का वो वाला वीडियो।
0: विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में विक्की कौन है?
3: राजकुमार राव।
0: राजकुमार राव को चुड़ैल से प्यार किस फिल्म में होता है? स्त्री में रुद्रा भैया कौन है?
3: रुद्रा भैया है पंकज।
0: पंकज त्रिपाठी को किस फिल्म में भगवान खुद हेल्प करने आते हैं?
3: OMG 2। ओ माई गॉड 2।
0: यस, OMG 2 में शिवजी कौन बने हैं?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार गुरु गुलाब खत्री किस फिल्म में?
3: आवारा पागल दीवाना।
0: आवारा पागल दीवाना में भूलने की बीमारी किसको है?
3: परेश रावल को।
0: परेश रावल किस फिल्म में थिएटर ग्रुप के ओनर है?
3: भागम भाग।
0: भागम भाग में टैक्सी ड्राइवर कौन है?
3: राजपाल यादव।
0: राजपाल यादव किस फिल्म में रोटी काटने के लिए आरी देगा क्या कोई? आरी मांगते हैं।
3: चुप चुप के।
0: चुप चुप के में म्यूट होने की एक्टिंग कौन करता है?
3: शाहिद कपूर।
0: शाहिद कपूर की बीवी से खिलजी को प्यार किस फिल्म में होता है? यस, पद्मावत में पद्मावती कौन है?
3: दीपिका पादुकोण।
0: दीपिका पादुकोण वेरोनिका किस फिल्म में बनी है?
3: कॉकटेल।
0: यस, क्या बात है, आप तो एकदम फ्लॉलेस फिल्मची साबित हुए हैं हमारे दूसरे वाले आज के दिन के। कैसा फील कर रहे हैं सर?
3: आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट।
0: तो चलिए इसी बात पे आपके हैप्पीनेस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाते हैं, आपको ये टैग देके।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: आई नो, जो लोग नहीं खेल पाए उनको फोमो हो रहा है, बट आई प्रोमिस अगर आप मुझे मिर्ची श्रुति के नाम से इंस्टा पे ढूंढ के मेरे डीएम में अपना नंबर भेजेंगे, देन डेफिनेटली आपको भी कॉल जाएगा टू प्ले द गेम। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स ऑल।

0: मजा और मजाक में कंफ्यूजन हो गया था शायद।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बाबू मोशाय, बात हो रही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे गानों की जिनको शायद लिखा गया था मजे के मद्देनजर, लेकिन उस पे तो लोगों ने मजाक ही बना दिया। खैर, आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही फनी सॉन्ग्स को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द सॉन्ग दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। उसके बाद देन वी टॉक्ड अबाउट आइसक्रीम खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी, और अब नंबर चार पे बारी है फिल्म सन ऑफ सरदार से सॉन्ग। मतलब है क्या ये पों पों पों पों पों? क्या आप एक ट्रम्पेट की बात करना चाहते हैं, भोंपू की बात करना चाहते हैं, क्या है भैया? शब्बीर अहमद साहब, आप ऐसे ऐसे लिरिक्स कहां से लाते हैं? सो ये मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 2012, डायरेक्टेड बाय अश्विनी धर, जिसमें म्यूजिक था हिमेश रेशमिया का। और पर्टिकुलरली इस गाने की बात करें पों पों की, तो उसमें विकास भल्ला, अमन त्रिखा और हिमेश रेशमिया की आवाज थी। बट वॉट इज दिस पों पों पों पों पों पों पों पों पों? किसी को समझ में आए तो हमें भी जरूर बताएं। फिलहाल लिस्ट में आगे बढ़े और बात करते हैं फिल्म हेरा फेरी से सॉन्ग। मतलब क्या ऑब्सेशन है पौ पौ पौ से? भाई, हेरा फेरी का ये जो पर्टिकुलर गाना है उसके लिरिक्स हैं समीर के, और ये मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 2000, डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन। बाकी आवाज इस गाने में है कविता कृष्णमूर्ति के साथ अभिजीत भट्टाचार्य का। इस मूवी के एल्बम में म्यूजिक है अनु मलिक सर का, विच डेफिनेटली इज समथिंग जो लोगों को पसंद आ ही जाता है, और इसलिए शायद इस गाने पे भी लोग इंजॉय कर ही लेते हैं। लेकिन पौ पौ पौ का मतलब अगर आपको समझ में आए तो MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके मुझे उसका मतलब जरूर समझाएं। टिल देन एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: लेट्स गो क्रेजी।

Mirchi. It's hot.